0: तिस कही ऐसा वास नानक न चले नाल खसम चले अरदास ले अरदास ले अरदास
1: पौड़ी चाकर लगे चाकरी जी चले खसमे पाए और मतिसों अगली अहव जो बदूना खा खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पा वजो गवाई अगला मोहे मोहे पाना खाए जिस ता दिता खाव न तिस कही ऐसा वास नानक पुना चल ले नाल।

अपन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पल तेरा कर नंदुदाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले किते छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर भला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान मता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर।

0: गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया। गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

जियो प्रया सैल पत्थर मह जानतो पाए ताका रिजका गह कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोए ना किसकी धरिया सिर सिर रजिका संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया उडे उड़ावै सह कोसा तिस पाचै बचरे श्रिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करे आ सब निदान दस अष्ट सिदान

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ै बो सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहिचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब ओ पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू दे सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू द्रिया ओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेला जिसन तू जाना है सोई जन जाने हर गुण साधी आख बखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अबर ना कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरडै पई ले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूढ़ मना
हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ। जप तप

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हादर रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हादर मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज करदै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तोज जू करियो रक्षा। राख ले हो मुहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पाल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरालम। निरंका निर्विका निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कैत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रचदीनी। कहूँ फूल राजा बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर कैठा। सागरी श्रेष्ठ दिखाय चंपव, आद जुगाद स्वरूप सजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रणकाता।
जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट न ऐ है। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक में हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा।

आई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना माने हो। सिमृत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कहें हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर

चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिबा तहां तहां रक्षे आरे आए ता।

तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जपन करतबा, जी अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वास तेरा घर पला, तेरा घर आनंद वधाई तुद घर

गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाढ़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सुकह टल गुर सेविय, निस सहज सोभाए, दर्शन परसै गुरु सहज सोभाए, दर्शन परसै गुरु।

जाको पाख स्वामी ऊच समाना ठाकुर तेरो आवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन हे नहीं निकटानी निरपाओ होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन हे नहीं निकटानी निरपाओ रहे लिव एक नानक हर मन मानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व।

मशक्कत काल नानक ते मुख उज्जले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत कहा नानक ते मुख उज्जले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद सार लगह

0: प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा ना।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड सो भर सदा सब बिदरत नागर संत महाराज।

राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कोल गर्भत है संचंत बिखेया छलं छिद्रं

सो के ओ संजिया ते सो का कहो क्या जतन जिस ते वंजिया हार बिसरे के ओ त्रिपतावा।

वाहेगुरु बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेत आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसे आरियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकिया झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटियां दी ओटा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सोब भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।